जक्षन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आपस बारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बात कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिटी ते कुंचर स्थूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछानाए घट घट के पढ़ पढ़ की जानाए जब कर करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा जब या कर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक बिसन महेश कोटिंदर ब्रह्मा किते राक्षस क्रोर जलेश दोहरा।

आजा भारत श्याम वाहेगुरु साहब के जहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशा सलाम है समस्त कलाम है के साहेब दिमाग है कुसल चिराग है काम करीम है के राज करीम है के रोजी दिहांद है के राज करीम है करीम कमाल है के हुसन जमाल है गनी मुल्क राज है गरीब नवाज हरीफ शकन है रास फकन है कलंक बनास है समस्त निवास है अगंजल गनीम है रजाय करीम है समस्त जबा है के साहेब करा है के नलगो परास है वैसो निवास है के सर्वगवान है हमेशा रवान है तमाम तमीज है समस्त अजीज है परम परम ईस है समस्त अजीज है अदेश अलेख है हमेशा अपेख है जमीन और जमा है अमीर को माँ है करीम कमाल है इज्जत जो माल है के चलंग प्रकाश है के वास है के आज सुबह

अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुनते हम जेते लाख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतोख जय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुण।

लख न प्रवान लख तापू पर तीर्थन सहजो बेवान लख सुरतन संग्राम रंग में छठे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ प्राण।

भांडे साजिना पे पूरण दे एक निदत समाई है एक चूल्हे रह चढ़े एक निहाली पै

क्या साल आई है भाई, दर्शन को बल जाए। सतगुरु विच वड्डियां वड्याईयां भाई, कर्म मिले ता पाए। एक हुक्म मन ना जाननी भाई, दूजे पाए खुआए। संगत ढोई ना मिले भाई, बैसन मिलन ना थाओ, नानक हुक्म तिना मना।

पंचम हरखत साग सुनावें, बंगाल मद माधव गावें। ललत बिलाव लगावई अपनी अपनी भांत, अष्ट पुत्र भैरव के गावें गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक का लापें, संग रागनी पांचो थापें। गोण करी अरदेव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। त्रासरी ए पांचो गाई, माल राग को सक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा, प्रबल चंड कौशक उभारा। खाओ खाटियों पहो नानद गाए, अष्ट माल कौशक संग लाए। पुनायो हिंडोल पंज नार संग अष्ट सुत, उठे तान कलोल गायन तार मिलावई। ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाय। सर सहिरी लै पार जा संग लाई, पांचों आर जा सुरमानंद पास करे आए। चंद्र बिंब मंगलन सुहाय, सरसबान ओ आए बिनोदा गावे, सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र

न सुझहि जे तिस गुण कोय कले। सुड़िया सिद्ध पीर सोरनाथ, सुड़िया धर तबले आकाश, सुड़िया दीप लो पातालो, सुड़िया पोहिन सक्या कालो, नानक भगत सदब गा, सुड़िया दुख पाप का नास, सुड़िया ईश्वर वर्मा इंद, सुड़िया मुखसाला हनुमंद, सुनिया जोग जुगा तन भेद, सुनिया शासत सिमरत वेद, नानक भगत सदब गा, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सत्संतोख ज्ञान, सुनिया अड़सठ का स्नान, सुनिया पड़ पड़ पाव अहमान, सुनिया लागे सहज ध्यान, नानक भगत सदब गास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सरागुणा की गाह, सुनिया सेख पीर पातशाह, सुनिया अंधे पावे राह, सुनिया हाथ वस गाह, नानक भगत सदब गा, सुनिया दुख पाप का नास, मन की गत कही न जाए, जे को कह पिछा पछताए।

0: ऐसो ये संसार देखना रहन को पई है रे, सूधे सूधे रे चलो तुम नतर गुदखा दबई है रे, बारे बूढ़े तरने पिया सब हूँ जम लै जाई है रे। संसार की रचना ही है, जीव जमते ने टिकते ने तो फिर मिट जाते, एक कुदरत का नियम है। जड़ा भी जमया है उसका अंत भी जरूर है, पर ये सतगुरु जानते हैं कि किस तरह जाना होगा। जेकर साहिब मरना विसर है, जे परमात्मा की याद मना अंदर बनी है, फिर ये जड़ा मरना है ये सौखा हो जाता है, सहला हो जाता है। सो पटेल सिंह जी एक साल पहला परिवार को सदीवी विछोड़ा दे गए सन, तिना की याद में मुख रखदा परिवार वालों परसों रोज तो गुरद्वारा साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ करवाए। भोग तो उपरंत विशेष दीवान कथा लंगर की सेवावान परिवार वालों कमाईया जा रही ने। गुरु पातशाह बख्शिश कर विछड़ी आत्मा नावा गवन की गिरत बचाऊद्या परिवार को पाना मंडा बल बख्शन जी हूँ आप सन्मुख सत्कार चौगानी दर्शन सिंह जी आप जी गुरमत विचार सरवण करवा जी हुई फुल बख्श देनी है।
1: वाहेगुरु जी का खालसा।

तीर्थ नावा चेत सुभावा बिन पाड़े के नाए करी मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी

0: साईं फलीकार,
1: सदा सलामत निरंकार,
0: असंख जप असंख पाओ,
1: असंख पूजा असंख तप ताओ,
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ,
1: असंख जोग मन रहे उदास,
0: असंख भगत ज्ञान विचार,
1: असंख सती असंख दातार,
0: असंख सूरमा बख्शार,
1: असंख मौन लै

0: अनाहत जुग जुग एको वेस
1: एका माई जुग दरियाई तिन चेले परवान
0: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण
1: जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान
0: ओहो वेखे उन्ना नदर न आवे।

0: का एहो धर्म,
1: ज्ञान खंड का आखो कर्म,
0: किते पवन पाणी बैसंतर, किते महेश,
1: किते बर में काढ़त कड़ी है।

0: ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे
1: गावे इंद इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले
0: गावे सिद्ध समाधि अंदर कावन साध विचारे
1: गावे जति सती संतो की गावे वीर करारे
0: गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग

0: अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस
1: एक माई जुगत ब्याई तिन चेले परवान
0: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण
1: जिव तिस पावे तिव चलावे जिव हो गए फरमान
0: ओह वेखे उन्ना नदर ना आवे बहुता एहो विडान
1: आदेश किसे आदेश
0: आद अनिल अनाद अनाहत।

0: जापे जाए
1: खंड का एहो धर्म
0: ज्ञान खंड का आखो कर्म
1: केते पवन पानी वे संतर केते कान महेश
0: केते बर में काड़त कड़ी।

0: जेको मन जाने मन कोए
1: मन्ने मार्ग ठाक न पाए
0: मन्ने पथ से प्रगट जाए
1: मन्ने मग न चले पंथ
0: मन्ने धर्म से ती संबंध

0: लखदरिया
1: कुदरत कवन कहा विचार
0: मार न जावा एक बार
1: जो तुझ पावे साई पलिकार
0: तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख जप असंख पाओ
0: असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ
0: असंख जोग मन रह उदास
1: असंख भगत गुण ज्ञान विचार

0: साह
1: अमल कर्ण मल व्यापार
0: अमूल व्यापारी अमूल भंडार
1: मल आव है मल ला जाहे
0: अमूल पाए अमूल समाहे
1: मल धर्म मल दीवान
0: अमूल तुल अमूल परवान

0: प्यार कुड़े फिराए
1: शंख मलेश मल पाखाहे
0: असंख निंदक सिर करे पार
1: नानक नीच कहे विचार
0: वारे न जावा एक बार
1: दुद पावे साई पलीकार
0: तू सदा सलामत निरंकार
1: संख नाव संख थाव
0: अगम अगम संख लो
1: संख कह है सर पार होए
0: अखरी नाम अखरी सलाह
1: अखरी

0: आखे देव
1: आखे सुर नर मन जन सेव
0: इते आखे अखण पाए
1: इते कह कह उठ उठ जाहे
0: इते किते होर करे
1: ना आख न सके के के
0: जिबड़ पावे ते बड़ होए
1: नानक जाने साचा सोए
0: जेको आखे बोल बिगाड़
1: ना लिखिए सर का वारा का वार
0: सोदर के हा सोकर के हा जितबे सर्ब संभाले
1: बाजे नारा ने का संखा के

0: चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे।
1: गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे,
0: गावे इंद इंद्रासन बैठे देवते अदर नाले।
1: गावे सद समाधि अंदर गावन साध विचारे,
0: गावन जति सती संतो की गावे वीर करारे।
1: गावन पंडित पण रखी सर जग

0: खानी चारे
1: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
0: सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
1: गेते गावन से मैं

0: अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश
1: एका माई जुगत ब्याई तिन चेले परवान
0: एक संसारी एक भंडारी एक लाए जीवान
1: जिब तिस पावे तिबे चलावे जिब हो वे फरमान
0: ओ वेखे ओना नदर ना आवे बहुता इहो विडान
1: आदेश किसे आदेश
0: आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश
1: असन लोई लोई भंडार
0: जो कछ पाया सो एका वार
1: कर कर विखे सृजनहार
0: नानक सच्चे की साची कार
1: आदेश जिसे आदेश
0: आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: एक दूजी बू लख होए लख होवे लख बीस
0: लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश
1: इतरा पद पवड़ी

0: अंदर कीटकार दोषी दोस्त रे
1: नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे
0: देहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे

0: निकलित तन विचारे।
1: गावहि सर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे।
0: गावे दर्शन बैठे देवतियां दरनारे।
1: गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे।
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे।
1: गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले।
0: गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्यारे।

0: अनिल अनार अनाहत जुग जुग एक वेश
1: एक दूजी बोलत होए लख होए लख बीस
0: लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश।

0: की फतेह पास आई दसवीं कभी उबाज बेनती चौ पई हमरी करो हार दे रक्षा
1: पूरी न होए चित की इच्छा
0: ताव चरना न मन रहे हमारा
1: अपना जान करो प्रीत पारा
0: हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो
1: आप हाथे मोई बचाओ
0: सुखी बसे मोर परवार
1: सेवक सिख सबे करतारा
0: मोर अच्छा निज कर देव करिया
1: सबे रिन को आज संगरिया।

0: हाथ दे मुझे उबारिया
1: मन काल का त्रास निवारिया
0: जो सदा हमारे पछा
1: श्री अस्तुजो करियो रक्षा
0: राख लियो मोहे रखनहारे
1: साहिब संत सहाय प्यारे
0: इन मन दुष्टन के हंता
1: तुमहु पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा अवतारा
1: काल पाए शिव जीव अवतारा
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा।

0: नर बकार नर लंब
1: आद अनिल अनाद असंभ
0: आका मूढ़ चारत भेदा
1: जाको पेव न पावत भेदा
0: आको कर पहन अनमानत
1: महामूढ़ कछ भेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा सव
1: निरंकार कचीवित नह कहो
0: आप अपनी बुद्ध है जेती
1: वर्णन पिल पिल दोहे देती
0: तुमरा लखा न जाए पसारा
1: कैप सजा प्रथम संसारा
0: के रूपा नूप स्वरूपा
1: रंग पे और आपके ही भूपा
0: अंडा जेरे से तेज कीनी
1: उद्भज खान पहर चतीनी
0: अहूं पुल राजा है बैठा
1: कौसिम पिव संकर कैठा
0: सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव
1: आद जुगाद स्वरूप सुंभव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो
1: सिख अबार सिख संगरो
0: दुष्ट जित

0: तुम संकट सवारे,
1: जो कल कोई के बारत आए हैं
0: ताकि काल निकले आए हैं।
1: अच्छा होए तो है सब काला,
0: दुष्ट दृष्ट रित काला,
1: कृपा दृष्टन जाए निहार हो
0: ताकि ताप तनिक मोहरियो,
1: वैद्य सद कर्मो सब होई
0: दुष्याश्वै सकिन कोई,
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा
0: काल फास्ते ताहे उबारा,
1: जिन नर नाम तिहारो कहा
0: दारी दुष्ट दुख ते रहा,
1: खड़ केत में सरन तिहारी
0: आपाते ने उबारी,
1: सर्व ठोर में हो सहाई
0: दुष्ट दोख के ले बचाई,
1: कृपा करी हम पर जग माता
0: ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता,
1: सहल देह को

0: खड़ल सुने गोंद जो चाहे सुरसना पावई
1: सुने मूड चित लाए चतुरता आ गई
0: दुख दर्द कौन एक ना तिन नर के रहे
1: हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहे
0: चौपाई संबत सत्रह सहस्पन जय
1: अर्ध सहस्पन तीन कही जय
0: भाद्रमा सुधी अष्टमी रवारा
1: तीर सतुद्रव ग्रंथ

0: सिमरे से सबके राजे
1: को सिमरे से सुखवासी
0: प्रभु सिमरे सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जनाब दयाला
0: नानक जन की मंगे रवाला
1: प्रभु को सिमरे से पर उपकारी
0: प्रभु सिमरे तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरे से मुख सहावे
0: प्रभु सिमरे
1: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभु सिमरे तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरे तिन अंधक नेरे।

0: के नाम जन को तृप्त पुगत
1: का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत का परन पंग
1: हर का नाम जन की वड़ियाई
0: हर के नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जपत कुछ नहीं वियोग
1: जन राता हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन के मालक जीना
0: हर तन जन के आप रख दीना
1: हर हर हर जन के ओट स्थानी
0: हर पल ताप जन अवर न जानी
1: बोध बो जन हर रस राते
0: सुन समाज नाम रसमाते
1: आठ पैर जन हर हर जपे
0: हर का भक्त प्रगटने शपे
1: हर की भक्त मुक्त बो करे
0: नानक जन संकेत तरे
1: पार जाते हो हर को नाम
0: काम तेन हर हर गुण गाम
1: शब्द उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संत रद वासा
0: संत प्रताप दुर्ध सब नसे
1: संत का संग वड भागी पाया।

0: को जन्म मरण ते डरै
1: साध जना की करनी परे
0: जे जन को प्रभु दास प्यासा
1: नानक ताके बल जासा
0: सगल पुरख महापुरख प्रधान
1: साध संग का मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सोई गनिए सब ते ऊंचा
0: जाका मन होए सगल की रीना
1: कट कट चीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल सृष्टि साजना
0: सुख दुख जन सम दृष्टि।

0: अपनी कथमत जन हो आपे
1: आपन संग आप प्रभराते
0: उमरी उस्तत तुम ते होए
1: नानक अवर न जानस कोए
0: सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सगल उद्यम मह उद्यम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी मह अमृत बानी
1: हर को जस रसन बखानी
0: सगल

0: निभावे
1: महा बुजारत बुझे डोरा
0: निस्के ये तो समझे पोरा
1: हाँ विषम पद कावे गोंग
0: जतन करे तो बीसुर पंग
1: यह पिंगल पर्वत पर पवन
0: नहीं हो तो उहा उस गवन
1: करतार करना मैं दीन बेनती कर
0: नानक तुमरी कृपा तरे
1: संग सुहाई सो आवे न जीत
0: जो बरावता से प्रीत
1: बलवा कह ग्रह पीतर बसा
0: अंध केल माया रंग रस
1: दृढ़ कर माने मने प्रतीत
0: काल न आगे मुड़े चीत
1: वैर विरोध काम क्रोध मोह
0: झूठ विकार महा लोभ त्रो
1: याहू जोक्त बिहाने कई जन्म
0: नानक राख ले आपन कर कर्म
1: ठाकर तुम पह अरदास
0: जियो पिंड सब तेरी रास
1: मात पिता हम बारक तेरे
0: तुमरी कृपा में सुख कनेरे।

0: सब उठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्ब सोक नानक तिन पाया,
1: अपना तो साहु अपनी दे रास,
0: हात पीत बरते अनद उलास,
1: अपनिया मान कछ बाहु साहो ले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही खोवे,
0: बाहर उसका विश्वास न होवे,
1: जिसकी वास्ते से आगे रखे,
0: प्रभ की आज्ञा माने माथे,
1: उसते चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नित पात माया के हेत,
0: सर पर हो

0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया
1: मिथ्या होमे ममता माया
0: मिथ्या राज जोवन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या राज हस्ती अस वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह अपमान
1: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गमान
0: अस्त्र भक्त साध की शरण
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या स्वर्ण पर सुन है
1: मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रया रूपाद
1: मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद
0: मिथ्या चरण पर विकार को ताव है
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा
1: मिथ्या बास लेत बिकारा
0: बिन बुझे मिथ्या सब भये
1: सफल दे नानक हर हर नाम लय
0: वृत्ति साध की आरजा
1: सच बिना कह होवत सूजा
0: मिथ्या नाम बिना तन अंध
1: अवता के दुर्गंध
0: बिन सिमरन धन रान व्यर्था बिहाये
1: बेग बिना जो खेती जाए
0: गोबन भजन बिन व्यर्थे सब काम
1: जो किरपंते निरार्थ दाम
0: तन तन ते जन जह कट बस्यो हर नाओ
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत अवर कछ अवर कमावत
1: मन नहीं प्रीत मुख गंड लावत।

0: जय प्रसाद करे पुन बहुदाना
1: मनाट पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद वो आचार बिहारी
1: इस प्रभु को साथ साथ चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभु सिमरु सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी निकी जात
1: सो प्रभु सिमरु सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुरु प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने कर्ण नाद
1: जय प्रसाद पे खे विस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जय प्रसाद हस्त का चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो।

0: परमानंदा
1: सार के संग नाई हो ताप
0: सार के संग तजे सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: सार के संग न कभू तावे
0: सार के संग सदा सुख पावे
1: सा संग बस अगोचर लह
0: साधु के संग अजर सहे
1: सार के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: सार के संग दृढ़ सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: सार के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: सार के संग सब कुल उदार
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निसारे
1: साधु के संग सो तन पावे
0: जिस संते सब को बरसावे
1: सा संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग सो बासुर देवा
1: साधु के संग पाप लायन
0: साध संग अमृत गुण लागाइन
1: सार के संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जनम
1: सार के संग नाहीं कछ काल
0: दर्शन पेट धोत निहाल
1: सार के संग कलहु खत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: सार के संग इहा उहा से हिला
0: साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: हार ब्रह्म साध रद बसे
0: नानक उदरे साध सुन रसे
1: सार के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: सार के संग न मनते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तरे
1: सार के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग कट कट गीठा
1: सा संग पै आज्ञाकारी
0: सा संगत पै हमारी
1: सार के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध पेरे संजोग
1: सार की महिमा वेद न जाने
0: जेता सोने ते तप ज्ञाने
1: सार की उपमा ते हुकुण ते दूर
0: सार की उपमा रही भरपूर
1: सार की शोभा का नाही अंत
0: सार की शोभा सदा बेअंत
1: सार की शोभा ऊंच ते ऊंची
0: सार की शोभा मूंछ ते मूंछी
1: सार की शोभा साध बन आई
0: नानक साध प्रभ भेद ना प्याई श्लोक
1: मन साचा।

0: ज्ञानी के कर सबानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दास

0: निमग्न ठाकुर नमस्कारे, नानक ओ अपरस सगल निस्तारे। अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना पास,
0: मन में प्रीत निरंजन दर्स,
1: पात्रया रूप न पेखे नेत्र,
0: साथ की टहल संत संग हेत,
1: कर्ण न सुने का

0: तैसा अमृत तैसी भिखाटी,
1: तैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंग तैसा राजान,
1: जो वरताए साई जोगत,
0: नानक पुरख के ये जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित कर राखे तैसा तिन्नाओ,
1: आपे कर्ण करावन जोग,
0: प्रपा वे सोई फिन होग,
1: असर हो आप होए अनंत रंग,
0: लखिन जाई पार ब्रह्म के रंग,
1: जैसी मत दे तैसा प्रगास,
0: पार ब्रह्म करता अविनाश,
1: सदा सदा सदा दयाल,
0: सिमर सिमर न

0: खेले भिक्षे अंतर जामी,
1: जो पावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि अगर न आवे,
1: मान कोह मान उक्ते क्या होए आवे,
0: ज्योतिष पावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब कछ ले,
0: ज्योतिष पावे सोई करे,
1: अनजानत भिक्षा महरचे,
0: जे जानत अपने आप बचे,
1: पर में पूला दे तिस्तावे,
0: निमिख में चार कुंट फिर आवे,
1: कर के पाजस अपनी भक्त दे,
0: नानक तेज ना मिले,
1: खिन में नीच कीट को राज,
0: ब्रह्म गरीब निवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: तत्काल दृष्ट प्रगटावे,
1: ताको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखन गने जगदीश,
1: जियो पिंड सब तेज तिसकी रास,
0: कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बणत आ बनाई,
0: नानक जीवे देख बटाई,
1: इसका बल ना ही इस हाथ,
0: कर्ण करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: ज्योतिष पावे सोई फुंथियो,
1: अपु ऊंच नीच मा बसे,
0: सबु हो कर रंग हसे,
1: अबू नंद चंद व्यवहार,
0: अबू ऊब आकाश प्याल,
1: अबू मेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: अबू नर्त करे वह पात,
0: अबू सोए रहे दिन रात,
1: अबू महाक्रोध बिकराल,
0: अबू सर्व की हो तिरवाल,
1: अबू होए वह बड़ राजा,
0: अबू भिखारी नीच का साजा,
1: अबू अब कीर्त में आवे,
0: अबू पला पला कहावे,
1: जो प्रभु राखे ते भी रहे,
0: गुरु प्रसाद नानक जस कहे,
1: अबू होए पंडित करे बखियान,
0: कौन तारी लावे ध्यान,
1: कबू तट तीर्थ स्नान,
0: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कबू कीट हस पतंग होए जिया,
0: अनेक जोन पर में परमिया,
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावा,
0: जो प्रपावे तिवे निचावे,
1: जो तिस पावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कबू साध संग ते हो पावे,
0: उस स्थान ते बहर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मंता नाम रते एक रंग,
0: सदा बसी पार ब्रह्म के संग,
1: जो जल में जले आए टाना,
0: जो ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गमन पाए बसराम,
0: नानक प्रभु के

0: गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर आज अपमान
1: सो नरपति होवत स्वान
0: जो जाने मैं जो बनवंत
1: सो होवत विशाखा जंत
0: आपस को कर्मंत कहावे
1: जन्म मरे सो जोन परमावे
0: धन भूका जो करे गुमान
1: सो मूर्खंदा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
0: धनवंता होए कर गरबावे
1: त्रिण समान कुछ संग न जावे
0: बोलास कर मानुख ऊपर करे आस
1: फल पीतरता का होए विनाश
0: सबते आप जाने बलवंत
1: किनमे होए जाए पसमंत
0: इसे न वधे आप हंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: बरपसा जाका मटे अभिमान
1: सोजन नानक दरगे परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: शरम पावे सगले फिर थारे
0: एक तपस्या करे हंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: एक जतन कर आत्म नहीं दरबा
1: हर दरगे को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: किसी भलाई निकट न आ
0: सर्व की रेट जा का मन होए
1: कह नानकता की निर्मल सोए
0: अब लग जाने मुझ ते कछ होए
1: तब इसको सुख नहीं कोए
0: जब है जाने मैं कछ करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग निचल नही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग तरम राय देश जाए
0: प्रभ कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस कटे लख को उठता वे
1: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
0: अनेक भोग बिख्या के करे
1: नेत्रता भी खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सपन मनोरथ बिरथे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ पागी किसी प्राप्त होए
0: अन्न करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: अन्न करावन करने हार
1: इसके हाथ कहा विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप आप प्रभ सोए
0: जो कछ करे जो कछ किन्नो सो अपने रंग
1: सबते दूर सबू के संग
0: मुझे देखे करे बवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: बुरे ना बंसी आवे ना जाए
1: नानक सद ही रहा समाए
0: आप उपदेश समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आप किनो आपन विस्तार
1: सब कुछ उसका ओ करने हार
0: उसते पेन कहो कैच होए
1: खानत नंतर एक सोए
0: अपने चलत आप करने हार
1: कौत करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत के न जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुर प्रसाद किने बख्यानी
0: सच सच सच सब कीना
1: कोट में देखने बिरले जीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: आत सुंदर पारे रूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: कट सट सुनी सर्वर बख्यानी
0: पवित्र पवित्र
1: पवित्र पनीत ना जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परे सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
0: संत के दुखन

0: संत का दुखी बिड़ग रूप हो जाए,
1: संत की दुखी को दुर्गे मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाया,
1: संत का दुखी ना मरे न जीवाई,
0: संत के दुखी की पूजे न आशा,
1: संत का चोखी उठ चले निराशा,
0: संत के दुख न त्रस्ते कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पिया कितना मिटे कोए,
1: नानक जाने साचा सोए,
0: सब करते इसके ओह करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभु की प्रभु की उस्तद करो दिन रात,
1: इसी त्याग सास ग्रास,
0: सब कछ बाते तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना

0: कर ले जियो।
1: नैनो हो पेक ठाकुर का रंग
0: सत्संग बिसे सब संग
1: चरण चलो महारो को बिंद
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म सुन हर कथा
0: कर दर के नानक गुजल मथा
1: बट भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाए
1: राम नाम जो करे विचार
0: सेवनवंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने
0: ए तो जियो सोची जाने
1: राम संग जिसका मन मानिया
0: नानक तिने निरंजन जानिया
1: हर प्रसाद अपन आप सुजा
0: इसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सा संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: अंदन कीर्तन केवल बखियान
0: गृहस्थ में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: इसकी कटिए जम की पासा
1: हर ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक तिसे न लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्मन चेत आवे अपना कृपा करे
0: सो से को किस्ते
1: जैसा साथ

0: सब कछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: नह कछ जन्मे नह कछ मरे
1: आपन चलित आप ही करे
0: आवन जावन भ्रष्ट अंधृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल मह आप
1: अनेक जुगत रच अथाप अथाप
0: अविनाशी नाही कच खंड
1: कारण तार्यो ब्रह्मंड
0: अलख पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो शोभावंत
1: सगल संसार उद्रेत निमंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदारण
1: प्रभु के सेवक दुख बिसारण
0: आपे मेल लय कृपाल
1: उनका शब्द जपै निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे
1: जिसनो कृपा करे बट पागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तिस गुरु को उत्तम कर मान
0: जो कछ करे सो प्रभु कह

0: पखार नाव चढ़ता रहे
1: प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे
0: जो अंधकार दीपक पर गास
1: दर्शन देख मन हुई विगास
0: जो महाध्यान महबार पावे
1: जो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
0: संतन की बाछो तूर
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बेल लाइए
1: पूर्व लिखे का लिखिया पाइए
0: दुख सुख प्रभ देवन हार
1: अगर त्याग तू तिसे चितार
0: जो कछ करे सो उसी सुख मान
1: भूला काहे फिरे अजान
0: कौन वास्त आई तेरा संग
1: लब करे और रस लोभी पतंग
0: नाम नाम जप हरदे माहे
1: नानक पद से ती कर जाहे
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: ताज अब मान ले हो मन मोल
1: राम नाम हृदय ने तोल
0: लाद खेप संत है संग चाल
1: अगर त्याग बिखिया जंजाल
0: तन तन कहे सब कोए
1: भूजल हर दरगह सोए
0: व्यापार बरला व्यापारे
1: नानक ताके सद बलिहारे
0: चरण साध को तोए तोए पियो
1: अर प्रसाद को अपना जियो
0: साध की तूरा करो स्नान
1: साधु पर जाइए कुर्बान
0: सा सेवा बड़ भागी पाइया
1: सत्संग हर कीर्तन गाइए
0: नित बेगम ते साधु राखे
1: हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: कोट गही संत ते दर आया
1: सर्व सुख नानक ते पाया
0: मैं तो को जीवालन हार
1: उठे को देवता दार
0: सार्वन दान जा की दृष्टि माहे
1: पूर्व लिखे का लेना पाए
0: सब कछ तिसका उहो करने जोग
1: इस विसुसर हुआ न होग
0: जप जन सदा सदा दिन रैणी
1: सब ते पूज निर्मल ए करणी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल किया
0: जाके मन गुर की प्रतीत
1: इसने आपे हर प्रभ जीत
0: भगत भगत सुनिए तिहु लोए
1: जाके हृदय एको होए
0: सच करणी सच ता की रहत
1: सच हृदय सतमुख कहत
0: साची दृष्ट साचा आकार
1: सच बढ़ते साचा पासार
0: पार ब्रह्म जन सच कर जाता
1: नानक सो जन सच समाता।

0: जाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद
0: कृपा निदान दयाल बख्शंद
1: सा तेरे की चरनी पाओ
0: नानक के मन ए अनराओ
1: मनसा पूरन सरना जोग
0: जो कर पाया सोई होग
1: मरन परन जाका नेत्र पोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: नंद रूप मंगल सद जाकर
0: सर्व शोक सुनिए सरता के
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तब मिले पिसर ग्रस्त में भोगी
1: त्याए त्याए भक्ते सुख पाया
0: नानक किस पुरख किने अंत न पाया
1: जाकी लीला की मत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल प्रोई अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे
0: जनदास नाम त्यागे से
1: रोगण मह जा को परमावे
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके अस्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेक करे एक रंग
1: नाना विद कीनो विस्तार
0: विनाशी एक ओंकार
1: नाना चलत करे खिन माहे
0: रियो पूरन सब छाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कट तिसके सब कट तिसके तिसके सब तिसके ठाओ
0: जब जब जीवे नानक हर नाओ
1: नाम के तारे सगले जानत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगल आकार
1: नाम के तारे पुरिय सब पवन
0: नाम के संग उदरे सुन सरवन
1: हर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सोचन गत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रदान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी
0: सत पुरख सब माही समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पात
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाय तिसे सब पली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नाने गुरते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नृत बुझे जे कोए
0: नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सो करने हार
0: अगर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्मा पय बिस्माद
0: जिन बूझिया तिसाया सवाद
1: प्रभु के रंग राजन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: ओए दाते दुख काटन हार
0: जाके संग तरे संसार
1: जन का सेवक सो बड़ भागी
0: जन के संग एक लिब लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जो

0: न जानियो
1: आठ पैर पर बसे हजूरे
0: नानक से ही जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट लेहे
0: मन तने अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व सुख का दाता
1: जिसकी सर्व सुख पाव है।

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: पावन से पूरन होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रगास,
1: सिद्ध कर जाए बसे अविनाशी,
0: कह नानक काटी जन फांसी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग सरण गुरुदेव,
1: रतन जन्म का होए उदार,
0: हर हर सिमर प्राण आधार,
1: पावन छुट नहारे,
0: सिमर शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भक्त करो मन लाए,
0: मन वंचित नानक फल पाए,
1: संग न चालस तेरे तना,
0: तू क्या लपटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब अरबनता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाता,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: अस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंफ झूठ पा सारी,
1: जिंदिए तिस बुझे न बिगाना,
0: नाम बिसार नानक पछताना,
1: गुर की मत तू लेह याने,
0: भगत बिना दो बेस्याने,
1: हर की भक्त करो मन मीत,
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माहे,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे,
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: सुनत गहत रहत गित पावो,
1: सार पुरसत हर को नाओ,
0: सहज सुभाए नानक गुण गाओ,
1: गुण गावस तेरी उतर समैल,
0: बिनस जाए होमे बिख फैल,
1: होए अचंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सास संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी सच करो बिहार,
0: यहाँ सुख दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाहे,
0: एक सिमर एको मन आहे,
1: एक के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्यो पूरन प्रभ्याप,
1: एक विस्तार एक ते पए,
0: एक आराध प्राशित गए,
1: मंतन अंतर एक प्रवरत,
0: गुर प्रसाद नानक

0: जाचक जन जाचे प्रावधान
1: कर कृपा दे वो हर नाम
0: साजना की मांगो तूर
1: पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर
0: सदा सदा प्रभ के गुण गावो
1: सासा प्रभ तुमे त्यागो
0: चरण कमर सो लागे प्रीत
1: भगत करो प्रभ की नित नीत
0: एक ओट एको आदा।

0: पदी
1: संत संग अंतर प्रभु डीठा
0: नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सगल स्मरि एक कट माहे
0: अनेक रंगना नादृष्टा है
1: नाव नेत अमृत प्रभु का नाम
0: देही में इसका विश्राम
1: सुन स्माद अनहत नाद
0: कहन जाय अचर्च विस्माद
1: इन देखिया जिस आप दिखाए
0: नानक तिस जिन सोची पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: कट कट व्याप रिहा भगवंत
1: धन माहे आकाश पयाल
0: सर्वलोक पूरन प्रतपाल
1: तन पर्वत है पार ब्रह्म
2: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: कौन पाणी बै संतर माहे
0: चार फुट का दिशे समाहे
1: इसते पर नहीं को ठाओ
0: गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मह देख
0: ससी अर सूर न खतर में एक
1: वाणी प्रभु की सब को बोला
0: आप अडोल न कभू डोले
1: सर्व कलाकार खेले खेल
0: मोल न पाइए गुण अमोल
1: सर्व ज्योत मह जा की ज्योत
0: कार्यो स्वामी ओत पोत
1: गुरु प्रसाद परम का नास
0: नानक तिन में एह विश्वास
1: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुनहे सब वचन
0: सर्वव्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिस की एह रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण करावन हार प्रभु जाने
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभु ते सगली उत्पात्त।

0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरह गोविंद
0: मनंत्र की उतरे चिंद
1: आस अनंत अघो तरंग
0: संत जना की तूर मन मांग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: सा संग अगन सागर तरो
1: हर धन के परले हो भंडार
0: नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: सा संग पज परमानंद
1: नरक निवार उदार हो जियो
0: गुरु गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित भो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दामोदर दीन दयाल
0: दुख पंचन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल ए रतन
1: संत कमावत हो तवदार
0: आप तरे लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजे
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
1: प्रगटे गोपाल महंत के माथे
0: नानक उदरे तिनके साथे
1: सरन जो सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट के बैर पए सब रेन
0: अमृत नाम सा संग लैन
1: प्रसन्न पए कर देव
0: पूरन होई से बकी सेव
1: आल जंजाल बिकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक निभी खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान कागर चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद को नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निदान
1: सर्व इच्छा ताकि पूरन होए
0: प्रदान पुरख प्रगट सब लोए
1: संत ऊच पाए स्थान
0: बहर न होवे आवन जान
1: तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रद नव नद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ग्रहण श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास
0: सबके मद सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: फल तर जन कै मुख पने
0: गुरु नानक नाम बचन मन

कह पिंगल पर्वत पार पवन नहीं हो तो उहा उस गन नहीं उहा हो तो उहा उस गवन करतार करना बै दीन बेनती कराए नानक तुमरी कृपा तराए संग सहाय सो आवै न चीतो जो बै राही था सो प्रीतो बलुआ के ग्रह भीतर बसै अंध केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन है प्रतीत काल नया वह मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म तो ठाकुर तुम पहर दास जीव पिंड सब तेरी रात तुम मात पिता हम बारक तेरी तुमरी कृपा मैं है सुकनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लग है आन सवाए नानक न सिजई बिनावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक पीना दे दस पीर ले तो मूढ़ा कह कह करे जिस ठाकर स्यो नाही चारा ताकू की जा सद नमस्कार जाके मन लागा पर मीठा सर्व सुख ताहू मन मुठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया गंत साह अपनी दे रास खात पीत बरत आनंद उलास अपनी अमान कछ बाहर सहले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीतियां पीखो वै बहुर का विश्वास न हो वै जिसकी वस्त तिस्या गै राखै प्रभ की आगै मन है मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहब सदा दयाल अनक पात माया के हेतो सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओह बिनसै ओह मन पछतावै जो दिसा सो चालन हारो लपट रहो तह अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेहे तक हथ नियावत केहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धंड कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोगुण धन बालो मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथिया रथ हस्ती असम वस्त्रा मिथिया रंग संग माया पेख हस्ता मिथिया त्रो मोह अभिमान मिथिया आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साधकी शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद मिथिया चरण पर विकार को तावै मिथिया मन पर लोभ लुभावै मिथिया तन नहीं पर उपकार मिथिया बासलेत बिकार बिन बूझे मिथिया सपय सफल देहे नानक हर हर नाम लये वृति साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाय मेघ बिना ज्यो कीती जाए गोबिंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यों किरपन के नरार्थ दाम धन धन ते जन जेह घट बस्यो हरनाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन ही प्रीत मुख गंड लावत जानन हर प्रभु परबीन बाहर पेक न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मै मराय जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भानी तिन प्रभु जाता नानक ओ न जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाना है अपना किया पह माना आप है आप आप करत नबेरा किसै दूर जनाब किसै बुझावत नेरा उपाव से अण सकती रहत सब का जाना है आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए थान तनंतर समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अरलो मोह बिन सजाए अंगमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे है। जे प्रसाद बसै सुख मंदर सत्याय सदा मन अंदर। जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रचना। जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यामन जोग। जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवल बहवै। जेह प्रसाद सुख सह सुविजय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै। जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै है। नानक पात सेती कर जावै है। जेह प्रसाद आरो कंचन देही लिवला बहुत श्रम स्नेही। जेह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहतो। जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कै। जे प्रसाद तुझको न पहुँचाए जे मन सासा सिमरो प्रभ उचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक तां की भगत करेहे। जे प्रसाद अभुखन पहरी जाए मन ते सिमरत क्यों आलस की जाए। जे प्रसाद असब हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कब न मसारी। जे प्रसाद भाग मिलक धना राख प्रोहे प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत सत्याई तिसै त्याए जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करह पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सच तारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमरो सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुनह करनाद जे प्रसाद पेखै बिस्मादु। जे प्रसाद बोलै अमृत रसनाऊ। जे प्रसाद सुख सह जे बचनाऊ। जे प्रसाद हस्त कर चल है। जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परम गत पावै है। जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो हो। गुर प्रसाद नानक मन जागो हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बसारो। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ता को जापो। जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसा जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुरासो। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाई जपै सो नावो आप गवाए सो हर गुण गावो। प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभ दया ते कंबल गास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्वन दान प्रभ तेरी मया आप हो कछु नकिन हो लयाओ। जित जित लव हो तित लगे हरनाथ नानक इनका कछु न हाथ। सरोख अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजन की आचार्य कथा अष्टपदी। साधक संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत। साधक संग मिटै अमान साधक संग प्रगटै सो ज्ञान। साधक संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी। साधक संग अगोचर मिलाए साधक संग सदा पर पुलै। साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब कीरे नौ साधक संग मनोहर बैनो। साधक संग नकत हूं तावे साध संग अस्थित अस्थित मन पावे। साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग

ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो माह। ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदारू, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बीता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देसो। ब्रह्म ज्ञानी का कथिन जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवा नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी अवलंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर धारै जो अंतर नाम सर में पिखाई, भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक ओह पर सगल निस्तारै।

साध की टहल संत संगहित, करण सुन काहू की निंदा, सब ते जाना आप उसको मंदा, गुर प्रसाद बिकिया पर हराए, मन की बात न मन ते टराए, इंद्री जित पंच दोख ते रह तो, नानक कोट मध्य को ऐसा अपर सो, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया होए ते पिन, कर्म करत होवे नहीं कर्म, तिस बैसनो का

कर कृपा अंतर और तारै पास प्रेत मुक्त पात्र कहो तारै सर्व रोग का यो खंदा मो कल्याण रू मंगल गुण गाम काहु जुगत किता न पाईऐ धर्म नानक तिस मिलाए जिस लिखिया तुर करम जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया नानक दास पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जानो सो दास दरगह प्रवाण अपने दास को आप कृपा कराए तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आग्या आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा अर तैसा उस रोग सदा आनंद तह नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत

जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब कै संग, पूजा दिखे करै बबीक, आपै एक आपै अनेक, मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहै समाए, आप उपदेसा समझै आप, आपे रचिया सबकै साथो, आप कीनो आपन विस्तारो, सब कछ उसका करण हार, उसती भिन्न कहो किछ होए, थान सनंतर एक कै सोए।